都德里广播电台现在播送一篇中央邦的民间故事，题目是《幽默的国王》。从前，在一个地方住着一位幽默的国王。有一天，

0: 子德里广播电台，这是普通话节目，播送到这里。谢谢大家收听，再会。
1: Sangeetmay Part 2.

सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

करना डालम डांका कंपनी है हर घर तिरंगा आचारा इन डिडेडिकेशन पर लागू कबांगसान वंदे मातरम.

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
4: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
2: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात

0: में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चे

0: की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने चार बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
3: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी।

0: है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आजाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को खत्म करने और यकजहती, समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आजादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनजर रैली के ये इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकामात पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकामात के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगामात की तशहीर की जाएगी। कल यौम आजादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आजादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मधु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर यह फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, नीज, आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
2: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की।

0: जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
1: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए, उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
2: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रही हैं।
0: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है, कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है, जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और CBI जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यानटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यानटेक ने

0: दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबाकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतिमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है, जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वीं यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकीना को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं लोकेश आनंद और साथी। आइए इनसे सुनते हैं शहनाई पर बजाया राग बैरागी।

0: अभी आप सुन रही थी शहनाई वादन, कलाकार थी लोकेश आनंद और साथी। अभी आपने इन कपिल शहनाई पर बजाया राग बैरागी सुना। इसके साथ ही स्वरगंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 9:15 होने को है। नीचे अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता सामाजिक कुरीतियों और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार हैं शुभांगी पवार।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीतियां और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर शुभांगी पवार।
1: जब तक समाज अन्याय भेदभाव और अंधविश्वास जैसी बुराइयों से मुक्त नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह विचार महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन का मूल संदेश था। गांधी जी केवल भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना नहीं चाहते थे बल्कि वे भारत को सामाजिक बुराइयों से भी मुक्त देखना चाहते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज समानता न्याय सत्य और मानवता के मूल्यों पर आधारित होगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ वे बुराइयाँ हैं जो समाज के विकास में बाधा बनती हैं और लोगों के बीच असमानता अन्याय तथा शोषण को बढ़ावा देती है। इनमें जाति भेद छुआछूत दहेज प्रथा बाल विवाह लैंगिक असमानता नशाखोरी अशिक्षा अंधविश्वास और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। गांधी जी ने इन सभी कुरीतियों को समाज की कमजोरी माना और इनके विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। गांधी जी छुआछूत को मानवता पर सबसे बड़ा कलंक मानते थे। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा मानना अन्याय और अधर्म है। उस समय समाज का एक बड़ा वर्ग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता था, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकता था और उसे सम्मान

पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी नहीं मिलता था। गांधी जी ने इस अमानवीय व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने तथाकथित अस्पृश्य लोगों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अनेक अभियान चलाए। वे स्वयं उनके बीच रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे और लोगों से आग्रह करते थे कि जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। उनका मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और समान अवसर प्राप्त नहीं करेगा, तब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था महिलाओं की स्थिति। गांधी जी का विश्वास था कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति का सही आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था और अनेक सामाजिक बंधनों में बांध दिया जाता था। गांधी जी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में समान रूप से सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और अन्य आंदोलनों में भाग लिया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता दोनों का विकास हुआ। इसके साथ ही गांधी जी बाल विवाह और दहेज प्रथा के भी कट्टर विरोधी थे। बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा और भविष्य को छीन लेता है। गांधी जी का मानना था कि विवाह तभी होना चाहिए जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा को समाज के लिए अभिशाप बताया। उनका कहना था कि विवाह कोई व्यापार नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों और दो परिवारों का पवित्र संबंध है। यदि विवाह धन और संपत्ति के आधार पर होने लगे तो यह समाज की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है। आज भी दहेज के कारण अनेक परिवार आर्थिक बोझ झेलते हैं और कई महिलाओं को मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांधी जी के विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। गांधी जी शराब और अन्य नशीले पदार्थों को व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक मानते थे। उनका विश्वास था कि नशा केवल स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, परिवार और आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने लोगों से आत्म संयम अपनाने और नशा मुक्त जीवन जीने की अपील की। गांधी जी अंधविश्वास के भी विरोधी थे। वे धर्म में आस्था रखते थे, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उनका मानना था कि किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सत्य, तर्क और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्चा धर्म मानव सेवा, प्रेम और सत्य में है, न कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों में। इसी प्रकार गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द पर भी विशेष बल दिया। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। गांधी जी का विश्वास था कि सभी धर्म हमें प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश देते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर हिंसा और घृणा फैलाना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कौन से उपाय बताए। सबसे पहला उपाय था शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति में अच्छे संस्कार, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करे। उनका नई तालीम का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित था कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई हो और व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक बने। दूसरा उपाय था सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से केवल भय पैदा किया जा सकता है, लेकिन
स्थायी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों के

0: विचार बदले जा सकते हैं और समाज में स्थायी सुधार लाया जा सकता है। उनका पूरा जीवन इस सिद्धांत का प्रमाण है। तीसरा उपाय था स्वयं से परिवर्तन की शुरुआत करना। गांधी जी कहते थे, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वे मानते थे कि समाज बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। यदि हम जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, यदि हम ईमानदारी, अनुशासन और मानवता का पालन करेंगे तो समाज भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। चौथा उपाय था स्वच्छता और श्रम का सम्मान। गांधी जी स्वयं सफाई करते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का सम्मान करना चाहिए। उनका विश्वास था कि स्वच्छता केवल वातावरण की नहीं बल्कि विचारों और चरित्र की भी होनी चाहिए। आज 21वीं सदी में भी गांधी जी के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। भले ही छू अछूत कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन सामाजिक भेदभाव अभी भी कई स्थानों पर दिखाई देता है। दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध आज भी चिंता का विषय है। नशाखोरी युवाओं के सामने एक गंभीर चुनौती है। गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वह निश्चित रूप से सत्य, सहिष्णुता, विवेक और मानवीय संवेदनाओं को अपनाने का संदेश देते। गांधी जी का सपना केवल एक स्वतंत्र भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां पर व्यक्ति को समान सम्मान मिले, जहां किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां सत्य, प्रेम और अहिंसा जीवन के आधार बने और जहां प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करे। सामाजिक कुरीतियों का अंत केवल कानून बनाने से नहीं होगा, इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी, शिक्षा का प्रसार करना होगा, नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से शुरुआत करनी होगी। यही गांधी जी का संदेश था और यही उनके विचारों की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए हम सभी यह संकल्प ले कि हम किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, दहेज और नशा जैसी कुरीतियों का विरोध करेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तथा अपने आचरण से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। यही महात्मा गांधी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही एक सशक्त तथा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था सामाजिक कुरीतियां और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर शुभांगी पवार।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

इसी के साथ आप अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, और ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के ठीक 9:30 होने को है, और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: London.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम घर आंगन, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के अनुभवों की, बदलते समय की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे जीवन में खुशियां और रंग भरती हैं। और आज के सफर में मैं यानी प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती आपके साथ रहेंगे।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा
2: प्यार भरा नमस्कार जी।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और रश्मि जी, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे श्रोता जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, और हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर
2: जी, है ना? और एक कदम बुजुर्गों की ओर जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम बात करेंगे परंपरा से लेकर तकनीक तक की, और खान पान से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक की, और उनके शौकों की जो उम्र के हर पड़ाव पर प्रतिभा जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम घर आंगन में। और देखिए रश्मि जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ, है ना
2: जी।
1: तो अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछ लेते हैं आज का।
2: तो क्या है प्रतिभा आज का प्रश्न?
1: आज का प्रश्न ये है कि बुजुर्गों के
2: अनुभव और युवाओं की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हम ये भी बता देते हैं प्रतिभा कि ये जो जवाब है वो कहाँ लिखकर भेजेंगे, यानी हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और इसके अलावा मैं एक और आईडी बता रही हूँ आपको, fmgoldaidelhi@gmail.com, यानी कि fmgoldga@gmail.com और fmgoldaidelhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और बात की है तुमने प्रतिभा देश की, तो सुन लेते हैं देश की ओर चलता हुआ गीत।

0: गोदान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। और रश्मि जी, देखिए भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है।
1: जी
0: अलग अलग राज्यों की अपनी परंपराएं, त्योहार और मान्यताएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है।
1: यानी प्रतिभा, आज आप जो बात करने जा रही हैं वो है तमिलनाडु के एक ऐसा ही जो खूबसूरत पर्व है, आदिपुरम।
0: जी, और जो कि तमिल महीने आदि में मनाया जाने वाला ये जो ये पर्व है वो देवी आंदाल को समर्पित है। और इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त श्रद्धा के साथ उत्सव में शामिल होते हैं।
1: जी, और जो देवी अंदाल हैं उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है प्रतिभा,
0: जी
1: कि उन्हें आदिपुरम की जो कहानी है वो श्री विल्लीपुथुर शहर में जन्मी देवी अंदाल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। अंदाल, जिनको गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहते हैं कि मंदिर के उद्यान में एक शिशु के रूप में वहाँ के पुजारी को मिली और उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा और अपनी बेटी की तरह रखा। बाद में यही आंदल बड़ी होकर भगवान विष्णु की समर्पित भक्त बनी और जो मंदिर श्री रंगम के भगवान रंगनाथ जी, उनकी वो बहुत बड़ी भक्त हुई। और किंवदंती है कि वो जो है रोज उनके लिए मालाएं बुनती ताजे फूलों की और पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ समर्पित करती। और जो उनकी कविताएं हैं जिन्हें कि तिरुअप्पवई और नचियार तिरुमोझी के नाम से जाना जाता है, उसमें जो भगवान विष्णु से मिलन की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त करती। तो ये लंबा चलने वाला उत्सव है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि लंबा चलता है, 10 दिनों तक चलता है ये
1: जी
0: उत्सव। और इसका जो समापन होता है वो मुख्य पूरम के दिन होता है। और उत्सव के अंतिम दिन भगवान रंगनाथ स्वामी और देवी आंदाल का दिव्य विवाह अत्यंत धूमधाम से कराया जाता है। और रश्मि जी जानती हैं कि मंदिर में देवी को कांच की हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं और
1: जी
0: बाद में उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद के रूप में भक्तों को, विशेषकर महिलाओं को, वो बांटी जाती
1: और
0: हैं।
1: हरी चूड़ियां जो हैं वो इंगित करती हैं
0: जी
1: सावन की ओर।
0: हाँ
1: और
0: जी
1: हम फिर वापस चलते हैं उसी।
0: जी

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म जुर्माना में, और रश्मि जी देखिए मेल आने शुरू हो गए हैं
1: जी
0: है ना। और सबसे पहले हमारे पास मेल आया है नवीन भाटिया जी का, वो कहते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव कभी पुराने और गलत नहीं हो सकते, दोनों को एक दूसरे की बात सुनकर समझ कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो
1: जी, और अफरोज शेख कह रहे हैं कि बुजुर्ग अगर कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं तो उनको सही मानते हुए और सोच समझकर ही काम करना चाहिए।
0: और एक और मेल आया है चरणदास जी का हिसार से, वो कहते हैं कि बुजुर्गों ने लंबा समय देखा है और समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अपनी गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे पूछकर

0: हम करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही। और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं नागलोई से, आप कह रहे हैं राम राम, हमारी भी राम राम आपको। और कहते हैं कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से बच्चे अपने मन की बात अगर कहने लग जाएं तो बहुत तरक्की हो जाएगी, यानी बिगड़े हुए काम भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई बड़ों ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उनका तजुर्बा जो है जिंदगी भर काम आता है, तो उनका तजुर्बा और जो युवा है उनका उनकी ऊर्जा अगर मिल जाए, प्रतिभा, तो
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा।
0: बहुत ही सही बात है ये। और देखिए मेल हम पढ़ते रहेंगे और हम श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जवाब हमें fmgoldga@gmail.com पर भेजते रहिए। तो रश्मि जी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: और देखिए स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और जब मौसम हो बारिश का तो थोड़ी ज्यादा सावधानी तो बनती है, क्यों, है ना।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और देखिए बारिश का मौसम आते ही मन करता है गरम गरम चाय पकौड़े मिलें और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मन सभी का ही करने लगता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस मौसम में खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन हो वो ताज़ा हो, अच्छी तरह पका हुआ हो, खुले हुए रखें अगर भोजन हो तो वो ना खाएं, और बहुत ज़्यादा तले भुने खाने से भी प्रतिभा
0: बिल्कुल
1: बचना ही
0: जी
1: चाहिए, है ना,
0: हाँ
1: क्योंकि उम्र के साथ हम सभी का जो पाचन तंत्र होता है बुजुर्गों का ही क्या कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में जो गरिष्ठ भोजन होता है स्वादिष्ट तो ज़रूर लगता
0: जी
1: है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए मौसम जो बारिश का मौसम होता है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, प्यास कम लगने लगती है, लेकिन शरीर को तो पर्याप्त पानी की जरूरत होती ही है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें। और सबसे जरूरी बात कि बारिश के मौसम में जो पानी है उसको उबाल कर पिएं, क्योंकि बारिश में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: हाँ, और अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो भाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान रखे, और जो परिवार में प्रतिभा युवा सदस्य रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने समय पर खाना खाया या नहीं, पानी पूरा पी रहे हैं, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल देखिए श्रोताओं भाई आखिर सेहत की देखभाल बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही हो।

0: सुराग, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को।
1: जी। और
0: और रश्मि जी, अब बात करते हैं सिल्वर इकोनॉमी की,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल। और सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ है प्रतिभा, जो बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियाँ,
0: जी
1: जैसे वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की जो रोज की देख जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्योंकि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जो बुजुर्ग आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये बहुत जरूरी है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों के लिए तकनीक, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े नए आइडियाज को वित्तीय सहायता देना, मतलब जो इस सिल्वर इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उसकी जो
1: जी
0: रणनीतियां हैं उसमें ये आता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर ब्याज दर वाली पेंशन योजनाएं और सुरक्षित निवेश विकल्प लाना, साथ ही साथ बुजुर्गों की सुविधा के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक जो टूरिज्म है ना,
1: जी
0: जहाँ बुजुर्ग जनरली देखे जाना चाहते हैं, है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: उनके लिए आरामदायक पर्यटन पैकेजों का विकास करना, ये सब आता है सिल्वर
1: जी।
0: इकोनॉमी
1: क्योंकि
0: के।
1: देखिए, जब बुजुर्ग यात्रा करते हैं तो उनकी ज़रूरतें अलग तरह की होती हैं। कई बार ऐसा होता है घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, उनको व्हील चेयर्स की आवश्यकता रहती है, मेडिसिन की आवश्यकता रहती है और हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से जो उनकी उनकी जो पर्यटन की सुविधाएं उनको जो दी जाती हैं, उस प्रकार के स्टार्टअप शुरू करना, ये भी बिल्कुल सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुई बातें हैं। इसके अलावा जैसे बुजुर्ग होते हैं प्रतिभा, उनके लिए दवाएं, अस्पताल और घर में दी जाने वाली जो चिकित्सा है ना, वो देखभाल, जब उससे जुड़े स्टार्टअप्स आते हैं तो ये एक तरह से सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं। तो
0: बिल्कुल।
1: ये भी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें भी बहुत अवसर हैं।
0: और
1: और
0: साथ ही साथ देखिए, पेंशन, बीमा और निवेश योजनाओं को भी उम्रदराज लोगों के लिए जो जरूरी होती हैं,
1: जी
0: उनका भी इस इकोनॉमी, जो सिल्वर इकोनॉमी है, उसके अंदर उसका ध्यान रखा जाता
1: जी
0: है ना?
1: और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष सुरक्षित आवास, जिनसे कहते हैं ना कि रियल एस्टेट में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना सीनियर सिटीजन लिविंग होम्स होते हैं, जहाँ की विशेषकर उन्हीं की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका पूरी जो है नियोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस प्रकार की जो सिल्वर इकोनॉमी है, जो भारत में अर्थ और अर्थ का दायरा और इसका बहुत महत्व है, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो समाज में आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु में। और रश्मि जी देखिए मेल हमारे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ महेश अग्रवाल जी का, जो हरियाणा से लिख रहे हैं। वो हमको नमस्कार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुजुर्गों का साथ बहुत ज़रूरी है हर काम में। उनका तजुर्बा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, परखा है। उनकी परख कभी भी व्यर्थ नहीं गई और उनका जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको कामयाब होना है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
1: जी, और शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं किताबों से अच्छा ज्ञान किताबों से अच्छा ज्ञान होता है, और अनुभव का ज्ञान अनुभव का ही ज्ञान होता है। हमारे बुजुर्गों के पास वो होता है, और क्योंकि

0: जो समझ और समय जब एक साथ होते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।
1: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो लिविंग ब्रिज की तरह होते हैं, हमारे परिवार, हमारे इतिहास, हमारे संस्कार और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी भाषा होती है और वो हमारी जो रूट्स होती हैं, कल्चरल रूट्स, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरण होती है।
0: जी, हम तो ये कहेंगे ना कि बुजुर्ग दिशा दिखाएं और युवा जो है उस दिशा में गति दें, तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।
1: जी
0: और एक और मेल आ गई है हमारे साथ, आप हैं सुरभि, मयूर विहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात कही है, कहा है भाई बुजुर्ग कहेंगे हमारे जमाने में ऐसा होता था, और युवा कहेंगे दादाजी हम इसका ऐप बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की कुछ विचारधारा जुड़ेगी ना तो भाई क्या बात होगी। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव की गाड़ी हैं और युवा एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जब दोनों साथ चलेंगे तो देश की यात्रा जो है और भी तेज होगी और रास्ता भी सही रहेगा।
1: और देखिए मतलब जब ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी तो जीवन का सफर भी बहुत सुहाना होगा, है ना। और तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में,
0: जी,
1: है
0: और
1: ना।
0: जैसा कि विचार था तो नई पीढ़ी के साथ कदम ताल मिलाना बहुत जरूरी
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: दोनों जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है,
1: जी।
0: तो ऐसा ही कुछ विचार लेकर हम बात करते हैं।
1: हाँ देखिए आज की दुनिया में स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ साथ बदलती दुनिया से जुड़े रहना भी तो जरूरी है, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं रश्मि जी, वो इसमें किसी से भी पीछे नहीं है।
0: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जो काम कभी चिट्ठी लिखकर या बैंक की लंबी कतार में लगकर किए जाते थे उनमें से कई काम ऐसे हैं जो अब तो बैठे बैठे मोबाइल पर कुछ मिनटों में हो जाते हैं, और हमारे बुजुर्ग भी इस बदलाव के साथ कदम ताल कर रहे हैं।
1: जी, और देखिए वरिष्ठ नागरिक आज स्मार्टफोन चला रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे परिवार से जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जानकारी लेते हैं आज हमारे बुजुर्ग, और साथ ही साथ जो डिजिटल सुविधाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं, है
0: वही
1: ना।
0: कभी कभी तकनीक थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, ऐसे में जो नई पीढ़ी है उसका फर्ज है कि वो धैर्य के साथ बुजुर्गों की मदद करें, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ये एक तरफा रंग नहीं है, आप उसी पेड़ के फल हैं भाई जो बूढ़ा हो चुका
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, और देखिए युवा पीढ़ी तकनीक सिखा सकती है तो वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और जीवन की समझ को साझा कर सकते हैं। वही आखिर नई और पुरानी पीढ़ी का साथ ही तो परिवार को मजबूत बनाता है
0: और
1: ना।
0: ये कदम ताल सिर्फ तकनीक सीखने और सिखाने का नहीं है भाई, दिल से दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, जहां जरूरत हो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जो आज हमारे बुजुर्ग और युवक भी कर रहे हैं, और भी करें तो कितनी अच्छी बात हो।

0: मेरा गांव मेरा देश। अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। और रश्मि जी
1: जी बिल्कुल
0: है ना, देखिए जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति थक कर बैठ जाता है ना, यानी जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि है आर्थिक सुरक्षा, है ना।
1: भाई, देखिए समय के साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, काम की व्यस्तता भी कम होती है, लेकिन जो खर्ची है, ज़रूरतें हैं, वो थोड़ा थोड़ा बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है प्रतिभा की आर्थिक सुरक्षा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: बिल्कुल, देखिए अपनी पेंशन बचत और नियमित खर्चों का ध्यान रखना जरूरी, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और भविष्य के खर्चों की योजना बनाना ऐसे में बहुत उपयोगी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है ना।
1: जी, और इसमें पहले ही हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या निवेश करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आर्थिक फैसले होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं होनी
0: जी
1: चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी तरह के निवेश में अपना पैसा लगाने से बचना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो बार बार हम FM गोल्ड चैनल से कहते हैं कि अनजान लोगों के साथ बैंक की जानकारी और OTP और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भाई कभी भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल, और देखिए किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले परिवारजन या किसी जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनसे सलाह लें, और परिवार के सदस्यों को भी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक मामलों में उनका सहयोग करें वो, है ना, और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है। मतलब जब अपनों का साथ मिलता है तो बुजुर्गों को भी बहुत अच्छा लगता
1: जी,
0: है ना।
1: और आर्थिक सुरक्षा जब होती है ना प्रतिभा, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है ना। एक विश्वास होता है कि हाँ, कोई भी अगर समस्या आएगी तो मेरे पास उतना धन है,
0: जी
1: उतनी उतने मैं मजबूत हूँ आर्थिक तरीके से, कि मैं भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आर्थिक सुरक्षा भविष्य को सुरक्षित तो करती ही है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ भविष्य की चिंता करने का नाम नहीं है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, मतलब
0: जी
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल
0: जी
1: जैसा, जो
0: हाँ
1: हमें खुशी भी दे, व्यस्त रखे, हर दिन का इंतज़ार भी करवाए, अपने कार्यक्रम जो है एक कदम बुजुर्गों की ओर, ये सुनने का और गीत संगीत के साथ जुड़ने का।
0: बिल्कुल।

0: रोटी कपड़ा और मकान, अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए रश्मि जी, एक मेल है हमारे पास
1: जी
0: उग्रसेन यादव जी का। वो कहते हैं कि बात बुजुर्गों की हो तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जो नई जनरेशन है, अगर वो अपने बुजुर्गों के साथ रोज कुछ घंटे, 1 घंटा अपने बुजुर्गों के साथ बैठे, तो उनके अनुभव को सुनकर धीरे धीरे जो हमारी युवा जो जनरेशन है, जो हमारे जो युवक हैं, उनका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, उनमें संस्कार आएंगे, और जो युवा हैं वो बुजुर्गों की तकलीफों को करीब से जान पाएंगे, उनको समझेंगे, और इससे दोनों का ही अनुभव बढ़ेगा और बुजुर्गों को आपसे मदद मिलेगी।
1: जी
0: तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने।
1: जी और उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि हमें अपने बड़ों के कहने पर चलना चाहिए, और जो बुज़ुर्गों के साथ अगर आप काम करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे, तो भाई वो कहते हैं लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा आशीष पाल वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाज़ियाबाद से। वो कहते हैं कि मैं 75 साल का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल यंग मानता हूँ जी। और आप हैं शीशपाल अकेला जी, लेकिन आप अकेले कहाँ हैं, आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के
0: जी
1: साथ
0: बिल्कुल,
1: हैं, एक कदम बुज़ुर्गों की ओर इस कार्यक्रम के साथ हैं जो आप ही के लिए खासकर बनाया गया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि अगर आप सेहतमंद हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और रोज अगर आप जो है एक्टिव हैं, तो फिर हम कहेंगे बीमारियों से भी दूर रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल एकदम जवान महसूस करेंगे। और हम ये कहेंगे जो युवा हैं प्रतिभा उन तो वो तो अगर तकनीक सिखाएं बुजुर्गों को, और युवा जो हैं बुजुर्गों से धैर्य सीखें,
0: जी
1: क्योंकि युवाओं को वाईफाई चाहिए।

0: और
1: बिल्कुल
0: बुजुर्गों को उनका साथ चाहिए।
1: जी
0: तो फिर हमें लगता है कि ऐसा जब दो पीढ़ियां जुड़ेंगी तो अनुभव और ऊर्जा का संगम होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या कहती हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रश्मि जी। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, बुजुर्ग अपने जीवन और कार्य क्षेत्र का अनुभव युवाओं से साझा करके युवाओं को मतलब बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और युवा जो हैं वो अपने अनुभव को नई तकनीक और आधुनिक सोच के साथ बुजुर्गों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है
0: इसके
1: ना।
0: अलावा रोजगार और उद्यमिता की अगर हम बात करें, ये तो अनुभवी बुजुर्ग जो हैं वो युवाओं को व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, और युवा नए स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और इसके अलावा दोनों पीढ़ियां मिलकर भाई हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, स्वच्छता हो, पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा हो, मतदान हो और सामाजिक जागरूकता हो, ऐसे अगर अभियान होंगे तो फिर तो क्या बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ऐसे अभियान होंगे, ऐसे सब जुड़ेंगे तो ये बात होगी सोने पे सुहागा, क्यों।
0: जी, और भाई बुजुर्ग अपने हुनर और पारंपरिक ज्ञान को युवा तक जब पहुंचाते हैं और युवा उसे आधुनिक बाजार और तकनीक से जब जोड़ते हैं तो संभावनाएं अपरिमित हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए हम तकनीक की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करें तो अब एक तकनीक की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से, कई लिहाज से आसान बना दिया है, और आज स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं है। ई संजीवनी भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें हर बार अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ऐसी डिजिटल सुविधा उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है।
0: इसके जो आधिकारिक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक घर पर बैठे मुफ्त ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो के जरिए डॉक्टर से परामर्श और डिजिटल पर्ची यानी ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है।
1: देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है,
0: जी
1: और ऐसे में उन्हें भी घर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और अस्पताल की लंबी लाइनों से में खड़े हुए बिना मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे डॉक्टर से संपर्क ये कर सकते हैं।
0: और ये जो ओपीडी है और ये परामर्श सेवा है ये नागरिकों के लिए बिल्कुल ही निशुल्क है। और इसमें प्रतिभा एलोपैथी के साथ साथ जो आयुर्वेद है, जो हमारे भारत का ज्ञान है स्वास्थ्य का, और होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर ये भी उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए इसमें आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि गंभीर या आपात स्थिति में देखिए हम भी यही कहेंगे और सब यही कहते हैं कि चिकित्सक से सहायता लेना जरूरी है, तो ऑनलाइन परामर्श को हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही इस्तेमाल करें।

0: रश्मि जी, देखिए कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और घड़ी ने हमें इजाजत अब नहीं दे रही है। वो कह रही है कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति। तो इसी के साथ मुझे यानी प्रतिभा को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी की FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आई फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है लम्हे। जी हां, वर्ष 1991 में बनी फिल्म लम्हे एक भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा जी ने किया था और इसकी पटकथा हनी ईरानी और राही मासूम रजा ने लिखी थी। इस फिल्म में श्रीदेवी माँ पल्लवी और बेटी पूजा की दोहरी भूमिका में हैं और अनिल कपूर वीरेन के मुख्य किरदार में शामिल हैं। साथ ही वहीदा रहमान, अनुपम खेर, दीपक मल्होत्रा और दिप्पी सगू ने महत्वपूर्ण सहायक भूमिका भी निभाई है। तो चलिए श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, इससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म लम्हे के संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो इसका संगीत शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म का गीत मोरनी बागा माँ बोले और कभी मैं कहूँ आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले हुआ करता था। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म ने 37वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में कुल 5 पुरस्कार जीते, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यश चोपड़ा जी को फिल्मफेयर अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए श्रीदेवी जी को, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए हनी ईरानी को, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए अनुपम खेर को और सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए राही मसूम रजा ने पुरस्कार प्राप्त किए। और प्राप्त हो भी क्यों ना, फिल्म थी ही इतनी बेहतरीन।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की शूटिंग राजस्थान और लंदन में दो चरणों में की गई थी। हालांकि फिल्म ने घरेलू स्तर पर औसत कारोबार किया, लेकिन समीक्षकों ने इसकी सराहना की। इस फिल्म को बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और इस फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा जी की बनाई फिल्मों में उनकी निजी पसंदीदा फिल्म बताई गई है।

श्रोताओं, लम्हे फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो एक वीरेन नाम का लड़का लंदन से राजस्थान अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आता है। तभी उसकी मुलाकात जयपुर में एक खूबसूरत लड़की पल्लवी से होती है। उसे देखते ही वीरेन को पल्लवी से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है, लेकिन पल्लवी सिद्धार्थ नाम के लड़के से प्रेम करती है और उससे शादी कर लेती है। ये देखकर वीरेन का दिल टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक हादसे में पल्लवी और उसके पति की मौत हो जाती है और ये वीरेन को अंदर से झंझोर देता है। मरने से पहले पल्लवी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम पूजा होता है। वीरेन पूजा की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन वो पल्लवी की यादों से बाहर नहीं आ पाता। साल बीतता है और पूजा बड़ी होकर बिल्कुल अपनी माँ पल्लवी जैसी दिखने लगती है। पूजा वीरेन से प्रेम करने लगती है, लेकिन वीरेन अपने मन में सिर्फ पूजा की माँ पल्लवी के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखता है। उसके बाद पूजा वीरेन से के प्यार को पाने की जिद करती है। फिल्म के अंत में वीरेन को एहसास हो जाता है कि पूजा की भावनाएं सच्ची है। वीरेन अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर पूजा के प्रेम को स्वीकार करता है और कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है।

श्रोताओं, फिल्म लम्हे अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई और अब फिल्म अपने समय से आगे थी।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कल पूरे मुल्क में 80वां यौम आजादी मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कौमी परचम लहराने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां बरसाएंगे, जिसके बाद वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस अजीम शान तकरीब के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम की शानदार विरासत के 150 साल मुकम्मल होने और 2047 तक विकसित भारत की समत भारत के सफर को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और उनके ग्रांकद्र ताउन का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर तकरीबात के दौरान पहली मरतबा वंदे मातरम गाया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स और माई भारत के रजाकार पहले कौमी गीत वंदे मातरम और फिर कौमी तराना गाएंगे। फौज, बहरिया और भारतीय फजाइया के 2500 लड़के लड़कियां और माई भारत के रजाकार इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को भी लाल किला तकरीबात का नजारा करने की दावत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मौके पर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 1,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और यौम आजादी का जश्न मनाने की गरज से मुल्क भर में 343 अहम मकामात पर बहुत से बैंड्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमात सुबह सवेरे 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदुईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो खिदमात सभी लाइनों पर 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी, इसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर चलाई जाएंगी। हुकूमत ने दिल्ली के लाल किले पर यौम आजादी की 80वें तकरीब का नजारा करने के लिए खसूसी मेहमानों की हैसियत से दिल्ली एनसीआर खित्ते से पीएम विश्वकर्मा के 100 मुस्तफेदीन को मधु किया है। बहुत छोटी, छोटी और औसत दर्जे की सनातों की वजारत ने बताया कि इन मुस्तफेदीन को आज एमएसएमईज की वजारत के अफसरों के साथ बातचीत के बाद कद्र शनासी और कद्रदानी के अलामत के तौर पर सुवेनियर भी पेश किए जाएंगे। मधु किए गए मुस्तफेदीन में दर्जी, कारपेंटर, सोनार, लोहार, तालासाज समेत पीएम विश्वकर्मा के तहत आने वाले 18 रिवायती कारोबार की नुमाइंदगी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पुरमन और खुश उसलूबी से यौम आजादी तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ सभी मकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल यौम आजादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़िद की जाएगी, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है।

0: आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुईं, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारिब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनअत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनअत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात की रोकथाम के ब्यूरो एनसीबी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मनुष्यात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्यात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संगमील की हैसियत रखता है। झारखंड की रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 3 हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने, जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल है, एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमजोर करने और उसे किसी और सम्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफद की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविंद्र पासवान ने रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वफद के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज माहिर तालीम अलका पांडे ने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने 18,60,00,000 रुपए मालियत के विरासत के तहफ़ के 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनका मकसद तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत के हामिल मकामात की अजमत को बहाल करना और खित्ते के विरासती सियाती मकामात को मुस्तहकम बनाना है। जुनूब मगरबी मानसून आज से हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज सुबह से कुछ इलाकों में शदीद बारिश की इतलात मौसूल हो रही है। बहुत से अजला में तूफानी बारिश से दरियाओं और नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वह एहतियात बरतें। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें योम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स दरामदात पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के

0: एमएसएन नगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
4: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के CID आईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष

0: को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: दोस्तों, इस याहू के अंदाज को सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम बात किसकी करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर और आप जुड़े हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर, सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, 14 अगस्त का जो ये दिन है, ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जब हमने उस सितारे को खो दिया था जिसने बॉलीवुड को डांस करना सिखाया। जी हाँ, आज बात करेंगे उसी अदाकार की जिनके आते ही पर्दे पर बिजली सी कौंध जाती थी, जिनकी आंखों में एक शरारत और चाल में एक अनूठा अंदाज था। आज हमारी जो ये खास पेशकश है वो समर्पित है याहू स्टार शम्मी कपूर जी की पुण्यतिथि पर। जी हाँ, शम्मी कपूर जी की आज पुण्यतिथि है, आज 14 अगस्त है और आज हम कर रहे हैं उन्हीं को याद उन्हीं के अंदाज में।
1: दुनिया चली चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: दोस्तों, सन 21 अक्टूबर 1931 की ये बात है। मुंबई में जन्मे थे एक बेटे जिनका नाम था शमशेर राज कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर का असली नाम एक्चुअली में यही था और उन्हीं को प्यार से हम कहते हैं शम्मी कपूर, लेकिन शम्मी कपूर नाम फिल्मी नाम है। असलियत में वो शमशेर राज कपूर के नाम से इस दुनिया में आए थे। महान थिएटर थे और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे, जिन्होंने मुगले आजम में अकबर का रोल किया है, याद है आपको? जी हाँ, और उन्हीं के एक और भाई थे राज कपूर, और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद, मतलब जब हमें लगता है कि सब कुछ लाइफ में इनके सेटल्ड है, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत आई होगी? आराम से फिल्मों में आ गए, आराम से सब कुछ मौका मिल गया। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको फिल्मों में मौका तो आराम से मिल सकता है, एक फिल्मी फैमिली में पैदा होने का फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको पसंद तो दर्शक करेंगे ना। और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उनका जो शुरुआती जो सफर था वो आसान नहीं था। कैसे नहीं था ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये गीत सुनते हैं।
1: हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ,

हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे शम्मी कपूर साहब की असफलता के दौर की, क्योंकि वो फिल्मी फैमिली में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम तो बहुत आसानी से मिला, लेकिन लोगों के बीच जो पहचान थी वो बनाने में उन्हें काफ़ी वक्त लग गया। 1953 में एक फिल्म आई थी जीवन ज्योति, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने लगातार 18 फ्लॉप फिल्में दी। उस समय लोग उन्हें राज कपूर की परछाई मानने लगे थे, लेकिन शम्मी कपूर जो थे वो अपने आप को एक पहचान दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें उनके भाई के नाम से नहीं, उनके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उनके खुद के नाम से, उनके खुद की पहचान से जाने। और उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। फिर आया साल 1957, रिलीज हुई एक फिल्म तुमसा नहीं देखा। अपनी मूछें कटवा कर, हेयर स्टाइल बदल कर और एक बिंदास अंदाज में जब वो पर्दे पर आए तो एक नए शम्मी कपूर का जन्म हुआ। और इसके बाद 1961 की फिल्म जंगली आई, जिसका गीत आपने इसी कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सुना है। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात भारत का एल्विस प्रेस्ली बना दिया। एल्विस प्रेस्ली जो थे वो अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर सिंगर थे। उन्हें रॉक एंड रोल के सम्राट की उपाधि दी गई थी। तो सोचिए, हमारे देश में ये उपाधि मिली थी शम्मी कपूर को, क्योंकि उनका जो डांस का अंदाज था, उनका जो बॉडी की थिरकन थी, वो अपने आप में ही अलग थी। उन्हें किसी कोरियोग्राफर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनका कहना था कि जब भी कोई संगीत बजता है, पता नहीं मेरी बॉडी में क्या होता है कि मैं अपने आप ही उसकी बीट के साथ डांस करने लगता हूँ। फिलहाल उन्होंने हम सबको डांस करना सिखाया, और इसी के बाद से हमने कहना शुरू किया कि तुमसा नहीं देखा।

दोस्तों, ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये है फिल्म राजकुमार से, जिसमें शम्मी कपूर ने इस गीत के अंदर जो पिक्चराइजेशन है वो हाथी के ऊपर किया है और वो हाथी के ऊपर बैठे हैं और गीत गाते हुए मस्त मौला अंदाज में अपने वो इस गीत को बना रहे हैं। लेकिन पता है इस गीत के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई, क्योंकि इस गीत में जहाँ पर वो हाथी के ऊपर बैठे हैं, हाथी ने जब चिंघाड़ा और अपनी सूंड को ऊपर किया तो उसके बाद उनके घुटने जो हाथी के कान के पास ही थे और वो दब गए और उनके घुटनों से काफ़ी तेज़ ओबियसली दर्द होने की आवाज़ भी आई। सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन शम्मी कपूर साहब तब भी नहीं रुके। उन्होंने इस गीत को फिनिश किया। अपना उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि मैं अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड हूँ, लेकिन इसके बाद उन्हें काफ़ी टाइम रेस्ट करना पड़ा।

और उसके साथ ही उनका जो फिल्मों में आने का जो जज्बा था वो तो बरकरार रहा, लेकिन उनका जो बॉडी का जो साइज था वो बढ़ता गया, यानी कि उनका वज़न वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि काफ़ी समय तक वो बिस्तर पर थे और इसके बाद से उनकी हालत में काफ़ी जो चेंजेस थे वो आप सबको देखने को मिले होंगे।

दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी गीत शम्मी कपूर के सुने, एक बात आपने शायद नोटिस की या नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इन सभी गीतों के पीछे जो आवाज़ है, यानी जो प्लेबैक सिंगिंग है, वो किसकी है? वो है मोहम्मद रफ़ी की। जी हाँ, शम्मी कपूर और महान गायक मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी को हिट जोड़ी माना जाता था। बॉलीवुड की ये सबसे सफल जोड़ियों में उस वक्त गिनी जाती थी, और रफ़ी साहब जो शम्मी जी की आवाज़ बन गए थे। और शम्मी जी खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर रफ़ी साहब को बताते थे कि वो पर्दे पर कैसे एक्सप्रेशंस देंगे और आपको अपने गाने को उसी तरीके से गाना है। यानी कि उनकी जो जोड़ी थी वो एक मिसाल जोड़ी थी। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए, चाहे वो जंगली का, चाहे कोई मुझे जंगली कहे ये गीत हो, इसके अलावा कश्मीर की कली का, तारीफ करूं क्या उसकी, तीसरी मंजिल का ओ हसीना जुल्फों वाली, एन इवनिंग इन पेरिस, या फिर ब्रह्मचारी, या ये गीत जो अभी आप सुन रहे हैं, ये सारे गीत बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए। और सच में ऐसा लगता था जैसे शम्मी कपूर ही इस गीत को गा रहे हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस ही ऐसे होते थे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं रॉक एंड रोल कलाकार शमी कपूर की। शमी कपूर जी ने अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में कई सम्मान और कई पुरस्कार भी हासिल किए। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी में उनके शानदार अभिनय के लिए। इसके अलावा उन्हें सहायक अभिनेता का भी जो अवार्ड था वो मिला फिल्म विधाता के लिए 1982 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें फिल्म फेयर का मिला भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1995 में, और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वो हासिल कर पाए 1999 में। यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे जो अवार्ड्स थे वो हासिल किए। और उनका जो ये जीवन है ये हमें ये सिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 18 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनकी। इतने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें टोकना शुरू कर दिया था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, वो तो सिर्फ अपने भाई की परछाई बन के रह जाएंगे। लेकिन इन अवार्ड्स की सूची जानने के बाद, और सबसे बड़ी चीज़ उनके फिल्मों की जो कामयाबी है वो जानने के बाद, आज भी यानी उस दौर से लेकर आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके गीतों से, उनके डांस से, उनके कला के अभिनय से। इन सब से हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाई और हार नहीं मानी।

दोस्तों, शमी कपूर साहब ने लंबे समय तक अभिनय किया, कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में और अपने समय में वो तो एक्टर बन के आए ही थे। लेकिन 14 अगस्त सन 2011 को शमी जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर जब भी उनके गीत आप सुनेंगे, जब भी आप उनका डांस देखेंगे और जब भी ये खूबसूरत गीत जितने भी मैंने अभी आपको सुनवाए, इनके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, उनका अभिनय है, ये सब आप देखेंगे तो आप उस याहू स्टार को भूल नहीं पाएंगे। उसकी गूंज आपके सीने में सुनाई देगी, क्योंकि शम्मी कपूर हमारे दिलों में जिंदा हो उठते हैं। उनका आखिरी ऑन स्क्रीन जो काम था वो था 2011 की फिल्म रॉकस्टार में उन्हीं के पोते रणवीर कपूर के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है। बहुत सारी बातें हैं जो शमी कपूर साहब के बारे में मुझे आपसे कहनी थी, लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है। शमी जी को उनकी पुण्यतिथि पर रेडियो परिवार की तरफ से शत शत नमन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। फिलहाल आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।

दोस्तों आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल से, मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौड़ और कार्यक्रम है मैटनी मेलोडीज। जब भी रेट्रो गानों की बात होती है तो दो नाम तो हमारे होठों पर अपने आप आ जाते हैं, एक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और दूसरे सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब। जिन दोनों को ही अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

दोस्तों, अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ में, और साथ में थे सुरों के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब। दोनों ने एक साथ दर्जनों सदाबहार जो डुएट हैं वो गाए हैं, लेकिन आपको कुछ उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस गीत को सुनते सुनते मुझे भी कुछ याद आ गया। एक ऐसा किस्सा जो 1960 में हुआ था। जी हाँ, इस दशक में दोनों के बीच रॉयल्टी को लेकर इतनी बड़ी बहस हुई थी कि दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। अब सोचिए, सुरों का जादूगर भी नहीं है और लता मंगेशकर स्वर कोकिला भी गायब हैं, गानों में कितनी कमी रह गई। मतलब कितने और भी खूबसूरत गाने आ सकते थे अगर ये लड़ाई नहीं हुई होती। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि ओपिनियन मैच नहीं करते। बस यही हुआ। लता जी चाहती थी कि गायकों को भी गानों की रॉयल्टी मिले, जबकि रफ़ी साहब का मानना था कि एक बार जब सिंगर को फीस मिल गई तो गाना तो प्रोड्यूसर का हो गया। यानी दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूँ ये खूबसूरत सा गीत।

सूरज दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस बहस की, उस बात की, जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और इस वजह से उन्होंने 3 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, कोई गीत नहीं गाया। लेकिन उन दोनों के इस वैचारिक

मतभेद को जो है सुलझाया, किसने सुलझाया? 1967 में एसटी वर्मन साहब ने उन दोनों के बीच में सुलह कराई, और उस सुलह के बाद बहुत सारे गीत उन्होंने गाए। उसी खूबसूरत और चुनिंदा गीतों में से एक खूबसूरत सा फूल यानी कि ये प्यारा सा गीत आपके लिए चुनकर लाई हूँ उन्हीं दोनों की आवाज़ में।

दोस्तों आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर। कार्यक्रम है एक माफ़ कीजिएगा कार्यक्रम है मैटनी मेलोडीज़। और इस कार्यक्रम के दौरान आपको मैं बता रही हूँ कुछ ऐसे किस्से जो हुए थे रेट्रो के ज़माने में, यानी कि उस ज़माने में कुछ ऐसे किस्से हुए थे जो आज भी याद आते हैं। तो उन्हीं में से एक किस्सा मैं फिर से चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ। बात करते हैं सबसे सतरंगी और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार की। किशोर दा की दीवानगी और उनके किस्से तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ना जानता हो।

0: लेकिन आपको पता है कि किशोरदा अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखते थे जिस पर लिखा था बिवेयर ऑफ किशोर। ऐसा क्यों करते थे वो, ये भी बताऊंगी, पहले ये गीत सुनते हैं।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

तो दोस्तों मैं आपको सुना रही थी किस्सा किशोर कुमार का, और किशोर दा जो थे उनके पास एक बार संगीतकार एचपी पुरोहित उनके घर उनकी पेमेंट देने पहुंचे। लेकिन आपको पता है किशोर दा ने क्या किया? उन्होंने उनका हाथ काट लिया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किशोर दा अपने आप में एक मस्त मौला और हरफन मौला किरदार थे। वो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से जीते थे कि उस जीवन को जीने के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे वो सबकी, क्योंकि उनके जो मूड थे ना वो हमेशा स्विंग होते रहते थे। वो अचानक से हंस देते थे, अचानक से शरारत कर देते थे, कुछ इस तरह से थे हमारे किशोर दा। लेकिन उनकी जो जादुई आवाज़ है ना वो कोई भूल नहीं पाता।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से आपसे लेनी होगी मुझे इजाजत। मैटनी मेलोडीज यहीं पर होता है समाप्त, लेकिन आपसे मेरी मुलाकात यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: साहब, आज हम एक अहम मौजू पर तबादले ख्याल के लिए इकट्ठा हुए हैं। मौजू है जंग आज़ादी और उर्दू सहाफ़त। इस मुबाहसे में मैं सुहेल अंजुम आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ एक अहम पैनल है जो सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें रोज़नामा जदीद ख़बर के एडिटर, मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ, खाका निगार और मुहक्किक जनाब मासूम मुरादाबादी, रोज़नामा इनकलाब के रेजिलिएंट एडिटर जनाब यामीन अंसारी और मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल के एडिटर जनाब शम्स तबरेज़ कासमी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौजू जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के किरदार से मुतल्लिक है। उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी, ये दोनों एक दूसरे के लाजम व मलजूम हैं। दोनों में आपस में चोली दामन का रिश्ता है। सहाफ़त की गुफ्तगु उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम जंग आज़ादी में उसके किरदार पर गुफ्तगु ना करें। इसी तरह जंग आज़ादी की तारीख उस वक्त तक अधूरी रहेगी जब तक हम उर्दू सहाफ़त, उर्दू अखबारात और उसके दूसरे कारकुनों की कुर्बानियों का जिक्र न करें। उर्दू का पहला अखबार 1822 में कलकत्ता से निकला था। उस वक्त अगरचे जंग आज़ादी का आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसके मालिक हरिहर दत्त ने जो पॉलिसी अख्तियार की थी, वो किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करने की थी। 1857 में जब पहली जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ, तो उसमें उर्दू अखबारात भी कूद पड़े और उस वक्त से लेकर 1947 तक जो जंग चलती रही, उसमें उन्होंने, उर्दू अखबारात ने और उसके मुदीरों ने कलीदी किरदार अदा किया। मैं सबसे पहले मासूम मुरादाबादी साहब से ये चाहूँगा कि वो इस मौजू पर तफसील के साथ रोशनी डालें।
1: शुक्रिया सुहेल अंजुम साहब, आपने दुरुस्त कहा कि 1822 में जब मुल्क में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ हुआ और पहला अखबार कलकत्ता से जामे जहानुमा निकला, तो मुल्क पर अंग्रेज़ों का राज था और ज़ुल्म व सितम की एक तारीख लिखी जा रही थी और वसाइल भी बहुत महदूद थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ी के अखबार थे और या फारसी के अखबार थे। तो पहला अखबार जो जामे जहानुमा के नाम से निकाला हरिहर दत्त ने, वो एक सफ़े पर मुश्तमिल था और वो चाहते थे, अंग्रेज़ उसकी अखबार की सरपरस्ती करते थे, उसकी तकरीबन 80 कापियाँ शाये होती थी और उनमें से बेशतर उसके ख़रीदार जो थे वो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ ये चाहते थे कि उर्दू चूँकि एक आम फहम ज़बान है और आसान है और फ़ारसी उन्हें ज़रा मुश्किल लगती थी, तो वो चाहते थे कि उर्दू को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन उस अखबार को ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसे वापस फारसी की तरफ जाना पड़ा। अब उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसकी दास्तान पहली जंग आज़ादी 1857 से शुरू होती है। आपको मालूम है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले जिस सहाफ़ी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो उर्दू डेली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर थे, जिन्हें 16 सितंबर 1857 को तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया था। उसी दौर में बहादुर शाह जफर के पड़पोते थे मिर्ज़ा बेदार बख्त और उनका अखबार था पयाम आज़ादी, उनको भी गिरफ्तार करके और उनके जिस्म पे सुअर की चर्बी मल करके उन्हें फांसी दे दी गई। और जहाँ जहाँ भी पयाम आज़ादी के शुमारे दस्तियाब हुए, उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और बड़ा जुल्म व सितम हुआ। ये तो एक पहलू जो है आगाज़ का है, और उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1947 तक, मुल्क की आज़ादी तक, जो जंग आज़ादी का पूरा मतलब, शुरू में तो जब 1857 की जंग नाकाम हो गई तो उससे अखबारों को भी बहुत नुकसान पहुँचा और उर्दू सहाफ़त भी बहुत पस्पा हुई, लेकिन 1907 में एक अखबार निकला इलाहाबाद से जिसका नाम था स्वराज्य। इस अखबार के 9 एडिटर्स को कालापानी की सज़ा हुई 10-10 साल की। इस अखबार के जो एडिटर थे बाबू शांतिलाल भटनागर, उन्होंने ये चाहा कि बेहतर से बेहतर लोग उनके अखबार से वाबस्ता हों और उसके मुदीर बने, तो वो कोशिश करते

0: और हुकूमत को, ब्रिटिश राज को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसी साजिश तैयार की कि ऐसा महसूस होता था कि हम किसी वॉलकोनों पर बैठे हुए हैं। और ये इतनी कामयाब साजिश थी कि ज़रा सी अगर चूक होती तो हमारा नामो निशान मिट जाता। तो आपको मैं बताऊं कि ये वो दौर था जब अखबारों को कोई सहूलत दस्तियाब नहीं थी, ना उसके प्रोफेशनल नामा निगार हुआ करते थे। बहुत से अखबार तो ऐसे थे जो कलमी अखबार थे।
1: आपने प्रोफेशनल नामा निगारों की बात की, एक बहुत अच्छा अखबार निकला था रियासत अखबार, सरदार दीवान सिंह मफ्तू ने निकाला था। कहा जाता था कि हिंदुस्तान में या तो अंग्रेजी हुकूमत के जासूस फैले हुए हैं जगह जगह चप्पे चप्पे पे, या फिर रियासत अखबार के नुमाइंदे फैले हुए हैं। सरदार दीवान सिंह का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका बड़ा ताउन है उनके अखबार का भी, और नाकाबिले फरामोश उनके जो खुदनविश थे, जो वाक़ात लिखते थे। तो मैं चाहूँगा कि आप अखबार रियासत के बारे में और सरदार दीवान सिंह के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालें।
0: देखिए, दीवान सिंह मफ्तून कोई बुनियादी तौर पर सहाफ़ी नहीं थे। वो बचपन में अपने घर से भाग गए थे और वो इधर उधर भटकते रहे। वालिद का उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने अखबार निकाला यहाँ से, दिल्ली से,
1: रियासत,
0: और इसका दफ्तर अजमेरी गेट पर था। अभी एक साहब जिंदा हैं जो दीवान सिंह मफ्तून के करीबी लोगों में थे, बिलाली साहब, महमूद सईद बिलाली। मैंने उनका इंटरव्यू किया और एक मज़मून भी लिखा है। उन्होंने बहुत सारे खतूत भी मुझे दीवान सिंह मफ्तून के दिए हैं, मेरे पास हैं। तो दीवान सिंह मफ्तून के बारे में ये आम तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने जो देसी रियासतें थी उन वहाँ पर अपने कुछ जासूस मुतय्यन कर दिए थे, जिसे वो अपना रिपोर्टर कहते थे। वो उन रियासतों के जो राज थे अंदर की, जाहिर है जो उस ज़माने की जो रियासतें थी, स्टेट्स थी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो वो उनको अपने अखबार में छापते थे और छाप करके उनसे ये भी कहा जाता है कि वो कुछ मामलात करते थे। तो मुझे इसकी तस्दीक नहीं है।
1: हम तो चूंकि मौजू हमारा जंगे आज़ादी है, इसलिए हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे। तो यामीन साहब, आप ये बताएं कि जब जंगे आज़ादी आगे बढ़ी
2: जी,
1: और बहुत से अखबार निकले, आप जिस अखबार से वाबस्ता हैं रोज़नामा इंकलाब, ये 1938 में बम्बई से निकला था। जाहिर है वो जंगे आज़ादी के शबाब का दौर था। तो आप अखबार इंकलाब की कुर्बानियों और जंग आज़ादी में उसके हिस्से के हवाले से कुछ उस पर रोशनी डालें, कुछ मज़ीद दीगर अखबारात पर, या आप जंग आज़ादी के हवाले से जो भी गुफ्तगू करना चाहें।
2: जी, ज़ाहिर सी बात है जो उस वक्त जो अखबार मौजूद थे और जो नए नए अखबारात निकल रहे थे उसमें इनकलाब भी था, तो इनकलाब ने भी बड़ा किरदार अदा किया उसमें। उस वक्त जो 1947 की जद्दोजहद जंग आज़ादी जो थी उसके लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, तो इनकलाब के अलावा भी उस वक्त बहुत सारे मेरे ख्याल से जो मशहूर अखबार थे उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। जैसे ज़मींदार है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कॉमरेड था, हमदर्द था, मौलाना आज़ाद का लहलाल, इस तरह से बहुत सारे अखबार थे जो पूरी तरह उन्होंने अपने आप को, अपने इदारियों को, अपने मजामीन को और अपने आप को जद्दोजहद आज़ादी के लिए झोंक दिया था। और वो उनकी जो कोशिशें थीं, जो उनकी जो काविशें थीं, वो रंग लाईं और आज़ादी पर जाकर ख़त्म हुईं। इसमें एक अखबार उर्दू मौल्ला का भी जिक्र करना ज़रूरी है जो मौलाना हसन मोहानी ने 1903 में शुरू किया था। ये वैसे तो एक रिसाला था, लेकिन अदबी रिसाला था, लेकिन इसमें शाये होने वाले जो सियासी नौयत के मजामीन थे वो अंग्रेज़ों की आंखों में खटकने लगे, क्योंकि वो इस तरह की के मजामीन होते थे जो सिर्फ जद्दोजहद आज़ादी के लिए ही मखसूस थे। तो इसमें शाये होने वाले जो मवाद था, जो अंग्रेज़ हुक्मरानों की नींद हराम हो गई इससे। आखिरकार उर्दू मौल्ला से ज़मानतें जब्त की गईं, प्रेस को जब्त कर लिया गया, उसके असासों को नीलाम कर दिया गया, मौलाना हसन मोहानी को भी पाबंद सलासिल किया गया इसी के लिए, लेकिन उन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। मौलाना हसन मोहानी के अलावा भी जो दीगर उस वक्त के जो जैद सहाफ़ी थे, जो जिन्होंने अपने आप को आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अज़ियतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद ये इन अखबारात और रिसालों की इशाअत जारी रही। अगरचे बहुत सारे अखबारात को जब्त भी किया गया, उनको बंद भी किया गया अंग्रेज़ों के ज़रिए, इसी तरह जो आज़ादी के हुसूल के बाद जो माहौल हुआ, जो मुल्क की तामीर और तरक्की का जब बात आई, तो उसमें भी उर्दू सहाफ़त ने जो किरदार अदा किया उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते।
1: आपने आज़ादी के बाद की सूरत हाल पर इशारा दिया है।
2: जी,
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जंग आज़ादी

0: हाँ, वो तो एक आज़ादी के हुसूल के लिए हम जो सहाफ़ी थे उस वक्त के या जो अखबारात थे वो उसके लिए लड़ रहे थे। अब उसके बाद एक चैलेंज आया कि मुल्क की तामीर और तरक्की कैसे की जाए, तो उसमें भी उर्दू सहाफ़त ने वही किरदार अदा किया, अपना अहम कलीदी किरदार अदा किया कि जिससे कि मुल्क की तामीर और तरक्की में जो जो भी कोशिशें हो सकती थी और जो जिम्मेदारियां उर्दू सहाफ़त पर थीं वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अदा की उसको।
1: जी शम्स तबरेज़ साहब,
0: जी
1: यामी साहब ने अभी मौलाना आज़ाद का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, मौलाना हसरत मोहानी का, मौलाना ज़फ़र अली का जिक्र किया। ज़ाहिर है बहुत सारे उलमा ने अखबारात निकाले और ये अखबारात मदारिस के असातिज़ा और तलबा भी पढ़ते थे, क्योंकि आप एक मदरसे के फारिग हैं, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि इन अखबारात में जो कुछ छपता था उसका असर मदारिस पे कितना पड़ा और क्यों पड़ा कि उलमा जो है वो जोक दर जोक मैदान जंग में आ गए।
2: जी बिल्कुल, बल्कि इन ये जो अखबारात थे इनके जो ज़्यादातर एडिटर्स थे, इनके जो कॉलम नवेस थे वो भी मौलाना थे, और मदारिस में उनकी भी अपनी मकबूलियत थी। ख़ा मौलाना अबुलकलाम आज़ाद हो या मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, ज़फ़र अली साहब हो या उससे पहले के लोग रहे हो, तो इनका जो इदारिया था, इनके जो अखबारात थे वो मदरसों में जाते थे, मदरसे के तलबा असातिज़ा पढ़ते थे, और उनके अंदर भी हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ने का शौक़ और जज्बा था। इसी वजह से आप देखेंगे कि जंग आज़ादी की तारीख़ में मदरसों के असातिज़ा ने, उलमा ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। कई सारी तहरीकें
1: जी
2: उनकी है, ख़ास शेख़ुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीक रेशमी रुमाल हो, या उससे पहले मौलाना कासिम नानोतवी ने शामली के मैदान में जंग का जो पूरा महाज संभाला था, या उसके फिर बाद का जो दौर है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। तो हर एक दौर में उलमा ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, और उर्दू अखबारात का बड़ा रोल था। आप देखेंगे कि आज भी उर्दू अखबारात को अगर सबसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला तबका है तो मदारिस का तबका है, या उर्दू अखबारात में जो काम करने वाले ज़्यादातर अफराद हैं तो मदारिस से आते हैं। तो उर्दू को ज़िंदा रखने में, इसी तरह उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखने में, उसके मेयार को बुलंद करने में मदारिस ने हमेशा अहम तरीन किरदार अदा किया है। और जब उर्दू अखबारात ने आज़ादी की जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया कि कैसे हर एक हिंदुस्तानी को आज़ादी की जंग को अपनी जंग समझनी चाहिए, क्योंकि उर्दू अखबारात का यह भी बड़ा रोल था कि आज़ादी की जो जंग है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जिद्दोजहद हो रही है, तो उसको हर इंसान अपनी कोशिश समझे, यह ना समझे कि जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों और ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यह उनके बका की लड़ाई है, उनके वजूद की लड़ाई है, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में हर एक को शरीक होना चाहिए। और उर्दू उस वक्त
1: जी
2: की अवामी ज़ुबान थी,
1: जी
2: तो उर्दू अखबारात ने इसमें अहम रोल अदा किया, तो मदारिस ने सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
1: मासूम साहब, 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी, जिसे बगावत भी कुछ लोग कहते हैं, उसके बाद उसको नाकाम बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जो जुल्म इस्तबदाद ढाए, दिल्ली का कोई दरख्त ऐसा नहीं था जो फांसी घर ना बना हुआ हो, और हर दरख्त पे लोगों को सूली पर लटकाया गया। तो ये जो सूरत हाल थी, इसने वक्ती तौर पर तो कुछ दिनों के लिए जंग आज़ादी के जज्बे को सर्द सर्द तो नहीं किया, आप ये कह सकते हैं कि दबा दिया, लेकिन उसके बाद फिर अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या वजह रही कि खामोशी के बाद फिर अचानक जंग आज़ादी शुरू हो गई और उर्दू अखबारात ने उसमें बढ़ चढ़ करके रोल अदा करना शुरू कर दिया?
3: देखिए, 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद, जिसमें मौलवी मोहम्मद बाकर को सज़ाए मौत दी गई, तकरीबन 20-22 साल का अर्सा ऐसा है कि कोई दूसरा अखबार नहीं निकला। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमें गूंज सुनाई देती है, यानी 19वीं सदी के पहले दहे में के बाद, चार बड़े अखबार निकले, और चारों अखबारात निकालने वाले वो लोग थे जो जंग आज़ादी में ख़ुद ज़ाती तौर पर शरीक थे और वो उसको लीड कर रहे थे।
0: जी
3: 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से अल हिलाल निकाला,
0: जी,
3: और अल हिलाल की ज़मानत 17 मरतबा जब्त की गई। अंग्रेज़ों ने 17 मरतबा उसकी ज़मानत जब्त की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर उन्होंने अलबलाग शाय किया।
0: निकाला जी।
3: इसी तरह से आप देखिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वो कॉमरेड निकालने से कलकत्ता से, लेकिन वो दिल्ली आए और दिल्ली के कूचो चलान से उन्होंने हमदर्द अखबार निकाला, और बड़ा पावरफुल अखबार था जिससे उस ज़माने के तमाम बड़े सहाफ़ी वाबस्ता थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर चूँकि जंग आज़ादी में खुद शरीक थे और अखबार को वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, नतीजा ये हुआ कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया।

碧哈尔邦具有悠久的灿烂历史背景，古印度时佛教创造人释鸠牟尼也是来到这里，在恒河

后边，大力进行全球活动。印度纳伦托大学也是全世界第一大学，在于比哈尔邦。

0: होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। मैं हूँ रेनू गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: वसीम अहमद।
2: और आज वसीम, क्या खबरें हैं खेलों से जुड़ी हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो आज हमारे पास है वो है विश्व कप हॉकी के बारे में, और उसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट प्रीव्यू के बारे में,
3: और उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरेंट कप फुटबॉल, सुब्रत कप फुटबॉल जो कि भारतीय टूर्नामेंट में काफी महत्वपूर्ण जगह बना के रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वॉश की,
2: और साथ ही साथ हम बात करेंगे टेबल टेनिस की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे वसीम?
3: FIH विश्व कप 2026 हॉकी से।
2: जी हाँ बिल्कुल, तो हॉकी के बारे में बात करते हैं। हॉकी के मैदान पर एक बार फिर दुनिया की नजरें भारत पर हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 का आगाज कल यानी 15 अगस्त से होने जा रहा है। बेल्जियम और नीदरलैंड्स संयुक्त रूप से इस विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं और पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में 16-16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों का फाइनल 30 अगस्त और महिलाओं का फाइनल 29 अगस्त को होगा। लेकिन भारतीय हॉकी के लिए ये सिर्फ एक और विश्व कप नहीं है। भारत ने अपना एकमात्र पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब 1975 में क्वालालंपुर में जीता था। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। कप्तान थे अजीत पाल सिंह, जबकि निर्णायक गोल महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने किया था। इस वर्ल्ड कप से अशोक कुमार को क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं।
4: पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, आपके उस पुनरावृत्ति को जो आप आज से 51 साल पहले भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया क्वालालंपुर में फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर देश को एक अपना तोहफा दिया था। देखें तो हमारे जीता, भारत देश जीता, एक भारतीय टीम जीती है, उसके 11 खिलाड़ी होते हैं जिनका फर्ज धर्म होता है इस टीम को आगे बढ़ाना, आगे जिताना। और शायद फाइनल गोल जो जीतने वाला था, मेरी हॉकी स्टिक से निकला, उसका मुझे थोड़ा सा खुद के अपने आप से मुझे एक अच्छा लगता है। लेकिन वो देश की जीत थी और वर्ल्ड कप में हमारी तीसरी लगातार पोडियम पर पार्टिसिपेशन था। 71 वर्ल्ड कप

0: ब्रॉन्ज मेडल 1973 एम्स्टर्डम, जिसमें भारत की टीम दो गोल की लीड लेने के बाद सेकेंड हाफ में हॉलैंड से हार जाती है टाई ब्रेकर में। लॉन्गेस्ट एवर लॉन्गेस्ट मैच जो खेला गया है खेल इतिहास में, वो 1973 वर्ल्ड कप का था, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, फिर सडन एक्स्ट्रा टाइम, उसमें फिर भारत की टीम की टाई ब्रेकर में हार। वो एक हमारे लिए बहुत दुखदायी क्षण थे 1973 वर्ल्ड कप के, क्योंकि तो उस वर्ल्ड कप को भारत की टीम को जीतना चाहिए था, बट वी लॉस्ट। और यह 75 वर्ल्ड कप हमारे लिए उस 73 की हार का बदला लेने का प्राण कमिटमेंट, और वो ये प्राणों कमिटमेंट मैं खुद करता हूँ। जब हम वहां पर होटल में जाते हैं, होटल में चेक इन के लिए जाते हैं, तो ये वार्डरोब में कप रखा होता है सामने डिस्प्ले के लिए, वो जाते हैं तो 73 की याद आती है। डेफिनेटली कोई चीज जब जहन पर दिमाग पर असर डालती है, तो मैं उस वार्डरोब के पास जाके और खड़ा हो जाता हूँ और कमिट करता हूँ, और कमिट ये कि जो कुछ भी कर पाऊंगा मुझे करना चाहिए इस वर्ल्ड कप में मैं करूंगा। और ईश्वर ने मुझे साथ दिया, ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, लोगों का स्नेह प्यार, देश का प्यार, और मैं समझता हूँ वो एक जीत हमारे लिए, जीत ही नहीं थी बल्कि एक सेकंड चैप्टर था इंडियन हॉकी के आगे बढ़ने का। उसके उसका प्रेडिक्शन तो मैं, कौन सी पोजीशन आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय टीम पोडियम पर खड़ा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यह टीम एक संतुलित टीम है, इसके अंदर सीनियर खिलाड़ियों का समावेश और हमारे जूनियर और जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इसके अंदर, वो सब इसके अंदर मौजूद है, जो अपने अपने रणनीति के अनुसार, अपने खेल कला कौशल के अनुसार टीम में जिन्होंने जगह बनाई और बनाए हुए हैं। खिलाड़ी जो है अपने पूर्ण शक्ति से, जो भी शक्ति उनकी आखिरी होता ना आखिरी दम अंदर मुझे देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे
1: बिल्कुल ऐसी ही कुछ उम्मीदें हम सभी भारतीयों को हैं, क्योंकि आज उस ऐतिहासिक विजय के 51 वर्ष बाद भारतीय पुरुष टीम फिर विश्व कप ट्रॉफी को देश में लाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी। और पुरुष टीम ही क्यों, महिला टीम भी उतने ही उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरी है। हॉकी इंडिया ने 20 सदस्यीय टीम की कप्तान कमान एस ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को सौंपी है। अनुभवी मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, मनदीप सिंह और शीलानंद लाकरा जैसे खिलाड़ी भी टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत पुरुष वर्ग के पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ इस है, और इस पर मनप्रीत सिंह क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है, रिसेंटली जो हमारी प्रो लीग के मैचेस थे उसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ खेले थे, वेल्स के साथ नहीं खेले हैं, बट उन दोनों के साथ काफी अच्छे मैचेस रहे, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे हम लोग उनको उनको हर्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे और गोल मार सकते हैं, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। और वर्ल्ड कप में ऐसा है कि हमारा पर्सनल ये रहेगा कि हाँ, कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भले ही जो अभी जैसा भी हो हम लोग अपना हर मैच में पूरा बेस्ट करें।
1: जी हाँ, बिल्कुल किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। भारत का पहला मुकाबला 15 अगस्त को वेल्स से, दूसरा 17 अगस्त को इंग्लैंड से और तीसरा 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तीनों मुकाबले एप्स्टनविल नेदरलैंड्स के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय अटैक में मनदीप सिंह और शिलालंद लाकरा जैसे फॉरवर्ड्स पर भी नजरें रहेंगी। शिलालंद लाकरा इस पर क्या महसूस करते हैं, आइए जानते हैं।
3: ये तो है प्राइड की बात है सर, कि इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जब नेशनल एंथम बजता है तो मतलब फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जो।
0: जी पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन साहब आपके उस पुनरावृत्ति को जो। जी पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन साहब आपके।
3: ये तो है प्राइड की बात है सर, कि इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जब नेशनल एंथम बजता है तो मतलब फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जितना भी हॉकी प्लेयर्स हैं, सभी का हॉकी प्लेयर्स लोग का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट कर, वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो वो सपना मेरा भी था। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को, मैं मेहनत अपना 100% दूंगा और मैं इसको बेस्ट करने, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस वर्ल्ड कप में। और जो ट्रेनिंग का जो बात है, जो मेंटेलिटी का जो बात है, वो ये है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, कि स्ट्रक्चर के बारे काम कर रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर के बारे काम कर रहे हैं, तो ये मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने आप को कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को, तो उसमें मैं अपना अपने आप पे ज्यादा फोकस हूँ कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ टीम के।

0: लिया उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना। एक्साइटेड एक्साइटमेंट भी था और कॉन्फिडेंट भी कि टीम में मेरे लिए एक जगह मिला वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करने के लिए।
1: जी
0: तो इसमें मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ हर एक ट्रेनिंग मैच में। अगर आज मैं बेस्ट किया तो उसको कैसे कंसिस्टेंट मतलब आगे कंटिन्यू करो वो करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसमें ज्यादा ये दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा, खुद का बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के अपने आप को कैसे मैं स्ट्रोंग करूँ उसके बारे में।
2: भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले पर हमने बात की मनप्रीत से और वो इस मुकाबले के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
0: सर हमारा यही रहेगा कि जो हम लोगों ने अभी लास्ट दो मैचेस जैसे खेले हैं वैसे ही खेलेंगे तो हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। बट हमें इमोशनल नहीं होना है, जो हमारा गेम स्ट्रक्चर रहेगा, जो गेम प्लानिंग हम लोग उस दिन के लिए करके जाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि एक हॉकी टीम के में सभी को अपना 100% देना होगा उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और हमारा यही रहेगा कि हम लोग अपना डिफेंस स्ट्रांग रखें, तो उनके साथ जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको गोल में करें।
2: हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले फॉरवर्ड लाइन की केमिस्ट्री और फिनिशिंग को टीम की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। मिडफील्ड में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन भी भारत की बड़ी ताकत है। मनप्रीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे अनुभवी खिलाड़ी मिडफील्ड को मजबूती देंगे। भारतीय हॉकी की नई पीढ़ी में एक दिलचस्प नाम है, यशदीप सिवाज। वह अपना पहला सीनियर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वो पूर्व भारतीय महिला कप्तान प्रीतम रानी सिवाज के पुत्र हैं। प्रीतम रानी सिवाज की विश्व कप के लिए क्या सलाह है, आइए सुनते हैं।
3: जब हम नेशन कप खेलते हैं या प्रो लीग खेलते हैं या टेस्ट सीरीज खेलते हैं, उसमें बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ना तो प्रेशर होता है ना कंपटीशन इतना बड़ा होता है, क्योंकि जो टीमें होती है उसमें नए पुराने खिलाड़ी ट्राई करते हैं सब, तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं होता। लेकिन जब मेजर कॉम्पिटिशन आता है, जब वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक होता है या ऐसे कॉम्पिटिशन होते, सब अपना 100% लेके आते हैं और अच्छे से अच्छी टीम बना के लेके आते हैं, तो इसमें तो डिफरेंट बिल्कुल अलग है। और हमारी टीम को भी उसी उससे खेलना है कि भाई हमारी टीम भी अब सबसे टॉप की टीम बनी हुई है और उसी लेवल पे जाके खेलना कि हमें वर्ल्ड कप की जो चार में पहुंचना है। तो हर लड़की का, हर कोच का, हर स्टाफ का, हर प्लेयर का, मतलब जो सोच लेवल है ना, जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमें पोडियम पे फिनिश करना और हमें 100% देना, क्योंकि ये 4 साल के बाद होता है और इतनी मेहनत की होती है, सारा रिजल्ट यही दिखाना। देखो नेदरलैंड से वो आए हैं और नेदरलैंड की टीम से चलो हमें बाद में खेलना, यूरोप की टीमें सब एक जैसा खेलती है, जैसे लाइक बेल्जियम है, न्यूजीलैंड है, ये सब एक जैसा स्ट्रक्चर, तो जिससे हमें आइडिया हो जाएगा। और ये पहले भी ओलंपिक में टीम के साथ काम कर चुका है, उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता कि भाई काफी हेल्प मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। देखो जैसे स्ट्राइकर है तो प्लेयर चलते रहते हैं, चेंज भी हो देते हैं, आप इस टाइम उसको नहीं देखते, हम इसको देख रहे हैं कि इस टाइम पीक पे कौन है, जैसे कि लाइक नेहा, नवनीत और बैक में जाके सुशीला चानू मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जैसे लाइक सविता गोलकीपर जो है कि कैप्टन भी रह चुकी है, सलीमा टेटे, ये सभी मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, उनको सीनियर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको जूनियर लड़कियां जो आई है उनको अपने साथ लेके चलना है ना, पूरी टीम को मोटिवेट करने करके चलना है, क्योंकि ये लोग अच्छे हैवी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, पिछले ओलंपिक भी खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। जैसे अपनी दीपिका ड्रैग फ्लिकर है, जबकि वो थोड़ा इंजरी भी है उसको इस टाइम, लेकिन फिर भी टीम के लिए वो ड्रैग जरूर मारे, क्योंकि पीछे जो टूर्नामेंट हम जीत के आए हैं उसकी सपोर्ट से ही जीत के आए। तो ये जो 5-6 प्लेयर हैं इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश का वो है, लेकिन उसको प्रेशर में ना ले, टीम के लिए स्पोर्ट में खेले, एक दूसरे से मिलके खेले, एक दूसरे बात करके खेले, है ना, एक दूसरे की गलतियां जो है उसको कवर अप करे, इससे हमारी टीम ज्यादा बेहतर जा पाएगी। कई लड़कियां नई है तो उनको भी साथ में लेके चलो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा, प्रो लीग में खेल चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है टीम में कहीं कमी है, ऑल प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन 3-4 प्लेयर सीनियर है, उनको साथ में जूनियर्स को लेके चल, जोर नहीं लेना, तीनों ही टीमें अच्छी हैं। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं साउथ अफ्रीका टीम में कैसी है, जिसपे हम गोल एवरेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2010 में हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स था, और 3 गोल से शायद आई थिंक 2 या 3 गोल से हारे थे, जो कि वो टीम हमें वो मैच हमें जीतना बहुत जरूरी था, तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई सी टीम कमजोर नहीं है, सब टीमें अच्छी है। जब हमारी टीम ओलंपिक में मेडल ला सकती है मैन की, तो इसमें भी ला सकते हैं वर्ल्ड कप में। और पीछे आप देखेंगे प्रो लीग के टाइम जो पहले मैचेस खेले तो उसमें हम हारे थे जब इंडिया में, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूव किया, हमने इंग्लैंड से हारे भी है और हराया भी है, हॉलैंड टीम से हारे भी थे हराया भी था प्रो लीग में। तो मतलब नेक टू नेक फाइट है, ऐसा नहीं है कोई टीम कमजोर है या हम किसी से कमजोर है। तो मेन टीम को मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई वो अच्छा

0: खेले और मेडल लेके आए 75 का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है उसके साथ अब कंटिन्यू करें, उसको ब्रेक करके दोबारा से गोल्ड लाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से, उसमें मेरा बेटा भी खेल रहा है यशदीप सिवाच, और मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई हमारी मैन विमेन दोनों ही टीमें खेल के आए और मेडल लेके आए, क्योंकि विमेन्स में जो है मेरी 5 लड़कियां, मेरी 5 स्टूडेंट मेरी अकेडमी की खेल रही है उसकी, तो मैन विमेन दोनों को गुड विशेष देना चाहूंगी और ओलंपिक में मेडल लेके आए और हमें बहुत अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा।
1: जी हाँ, पूरे देश को अच्छा लगेगा। और जैसा प्रीतम सिवाच ने बताया कि महिलाओं की चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, भारतीय महिला टीम भी इस विश्व कप में मजबूत आत्मविश्वास के साथ उतर रही है। टीम की कप्तान है सलीमा तेते, इस विश्व कप पर उनकी क्या तैयारी है, आइए उन्हीं से सुनते हैं।
2: मैं ऑनेस्ट बताऊंगी, मैं नर्वस भी हूँ और एक होता है ना कि हर एक प्लेयर को होता है, बट कोई बात नहीं, नर्वस नॉर्मल है। और मैं यही जब भी ग्राउंड में जाती हूँ तो मैं यही अपने आप को मोटिवेशन देती हूँ, नहीं मुझे अपने टीम के लिए खेलना है और हर एक प्लेयर को सपोर्ट करना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि नहीं, अगर हार भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ, जीत भी रहे हैं तो भी से मैं टीम के साथ हूँ। मैं हमेशा मैं टीम का एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ कि नहीं, मैं हर एक प्लेयर को मैं सपोर्ट करूंगी कि मिस्टेक हुआ तो भी से कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट करेंगे। तो एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहती हूँ टीम में कि अभी तो हम कर ही रहे हैं बट इसको और ज्यादा कर सकते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं जितना हो सके मेरी तरफ से अपनी टीम को मैं पूरी तरफ से एक होता है ना अपने आप को मैं उनको एक सौंपती हूँ कि नहीं, जितना हो सके मेरी तरफ से मैं उनको सपोर्ट करूंगी। बहुत सारे यंग प्लेयर हैं जैसे साक्षी है, इसिका है और ऋतुजा है, तो मैं अपने तरफ से उनको हमेशा यही मोटिवेशन देती हूँ कि आप लोग खुलकर खेलिए और अपना इंजॉय कीजिए, क्योंकि प्रेशर लेने वाली बात आप लोग की नहीं है, वो हम लेंगे। और मैं अपने तरफ से यही बोलती हूँ कि आप लोग खुलकर खेलिए और इंजॉय कीजिए। हमारे टीम में सविता पुनिया का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा एक होता है ना कि आपके पास इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एक गोलकीपर है और आपको इतना अच्छा सपोर्टिव करने वाली प्लेयर है, तो आई थिंक इससे बड़ी हो ही नहीं सकती। और एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपके पास इतना अच्छा गोलकीपर हो और वो पीछे बस वो फ्रीडम देते हैं, आप लोग खुलकर खेलिए आगे मैं पीछे खड़ी हूँ, तो वो चीज हमेशा मोटिवेशन देती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हमेशा मोटिवेशन देती है। ये थी सलीमा तेते जो भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। भारत पूल डी में चाइना, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ है। भारत का

ही नहीं ईद एक स्वाहिली या आकाशवाणी हम जाम्बो वास्कले वेटू आफ्रिका मशवाई के नामा हाली पेंगी ने पोपोटे अंबा को ईदा ही न सिकिका टुन टंगाजीनी क्वेने क्लो हार्स एल्फो कुमिना टानो ना मिया एने यानी मिटा बैंडी कुमिना सीटा हिविसासा निसा टीसा न रोबो जजुनी का साजा अफ्रीका मशवाई की क्यों निसा कुमिना अंबिली का सा रोबो हापा इंडिया मपंगो वेटू को आजुनी हाले उतुना वाले टेनी तारीफा या हबारी बादाय हापो तुटा वाले तेनी कि पिंडी मालूम कि नाचो इटवा

0: लिए भी वरदान है। आज सपोज करें कि एक पैकेट पर डिजाइन उनको करना हो, अब उस डिजाइन कराने के लिए वो छोटे से गांव से बड़े शहर की तरफ जाते थे, आज उनको कला है कि वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने डिजाइन का कई फॉर्मेट तैयार करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समुचित सदुपयोग उतना ही हमको करना है जो हमारे विकास का बाधक न हो, उतना हमको करना है जो हमारे लिए अच्छे सहयोगी हो सके, उतना भी नहीं हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है जो हमारे विकास का ही बाधक हो जाए। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और अवसर है, शहर से ज्यादा अवसर है, सरकार भी ग्रामीण भाई बहनों के लिए ज्यादा देख रेख कर रहे हैं।
1: ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि युवा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आज के दिन जो महिलाएं हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो आप महिलाओं की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं?
0: सही वातावरण का यदि निर्माण हो, सही अवसर मिले, तो हमारी बहनें भाइयों से आगे बढ़कर दिखाते हैं और ये अनेक बार प्रमाणित हो चुका है। और अभी के क्रम में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी गैप है, अभी बहनों को और आगे आने की जरूरत है। और सभी भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि उनके घर के जो भी परिवार के सदस्य हैं, यदि उत्पादकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जरूर प्रमोट करें, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ता है, और जो महिलाएं घर के लिए निर्णय ले सकती हैं वो पुरुष नहीं ले सकते, इसलिए बहनों की भागीदारी सबसे ज्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए।
1: उदय शंकर जी, आप जो है विश्व युवा केंद्र से आते हैं, तो आपका संगठन ग्रामीण युवा विकास के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है?
0: विश्व युवा केंद्र 1961 से लगातार युवा विकास की तरफ देख रही है और उनको भागीदारी से जोड़ रही है। मुझे कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारत का सबसे पहला यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विश्व युवा केंद्र है, और तब से एक ही प्रयास है कि युवाओं को कैसे हम सही दिशा में चैनलाइज कर सकें, उनमें कैसे सकारात्मक की भावना जागृत किया जा सके और उनके पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए, उनके छिपे हुए गुण को कैसे निखारा जाए, इसके लिए हम लोग सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग हार्ड स्किल्स भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति प्लम्बर का ट्रेनिंग ले लिया या इंजीनियरिंग ही वो लिए, उन्हें एक इंटरव्यू के दौर से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब उसके लिए जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इसके लिए विश्व युवा केंद्र अपने स्वयंसेवी संस्थानों के साथ जुड़कर, युवा संगठनों के साथ जुड़कर देशव्यापी एक मुहिम चला रखा है। आज लाखों युवक ऐसे हैं जो विश्व युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं और अपने रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपने भाइयों को जोड़ने में आगे बढ़ रहे हैं, और स्वयंसेवी संस्थान भी उनसे ट्रेनिंग लेकर सुदूर गांव में, आज उड़ीसा के किसी रिमोट गांव में आप जाएं, आज झारखंड के किसी रिमोट गांव में जाएं, आज बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाएं, हर जिला तक विश्व युवा केंद्र की एक पहुंच है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें हमारे को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इसमें हमें जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके तरफ से बहुत सपोर्ट है, और सबसे

0: ज्यादा सपोर्ट जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो गांव-गांव काम कर रहे हैं, उनके तरफ से योगदान है। तो युवा कैसे आगे बढ़े, क्वेश्चन यही है। सबसे बड़ी बात है कि उनको सही अवसर देना, उनके क्षमता को निखारना, और उनको उनकी जब क्षमता बढ़े तो सही एक दृष्टिकोण में उनको जोड़ना। स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट और मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी जरूरी है, और बहुत प्रभावी रूप से विश्व बैंक केंद्र इसी को करने में लगा हुआ है।
1: आज का जो युवा है उसे कल देश का नेतृत्व करना है, और युवा बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो क्या हम उनमें नेतृत्व अक्षमता के गुण है, क्या हम वो विकसित कर सकते हैं?
0: प्रधानमंत्री महोदय मन की बात में अनेक बार इस बात को उठा चुके हैं, युवा दो पीढ़ी की कड़ी है। जो एक उनके बुजुर्ग हैं, उनके भी देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके भी वो कर्णधार हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लोगों की जोड़ने की कला, यदि ये चार पांच चीजों को हम लोग विकसित कर लेते हैं, जो कि युवा कर रहे हैं, तो वो केवल हम एक नेतृत्वकर्ता ही नहीं बन सकते, बल्कि वे एक दिशा निर्धारण करने वाले लोग बन सकते हैं। और जब एक छोटा सा गांव आगे बढ़ेगा तभी एक जिला आगे बढ़ सकता है, जब एक जिला बढ़ेगा तभी एक राज्य बढ़ सकता है, जब राज्य बढ़ेगा तभी हमारा पूरा देश बढ़ सकता है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, किनके बदौलत कर रहे हैं, ग्रामीण युवाओं के बदौलत कर रहे हैं। आज शहर बसा तो क्या आया गांव से, वहां का कल्चर आया, वहां का डिसिप्लिन आया, वहां का वैल्यू सिस्टम आया। इसलिए ग्रामीण युवाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी युवाओं से भी ज्यादा है। मैं केवल एक संदेश युवाओं को ये देना चाहता हूं कि अपने गांव को छोटा मत समझिए और अपनी क्षमता को कम मत आंकिए। आदर्श विकास की धारा गांव के गलियों और खेत खलिहानों से ही संभव है। कौशल सीखें, तकनीकी अपनाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लें, उद्यमिता की ओर बढ़ें, अपने समुदाय के विकास में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। सशक्त युवा, सशक्त गांव और सशक्त भारत, यही विकसित भारत की पहचान है और यही हमारी मजबूत नींव भी है। तो आप चलते रहें, बढ़ते रहें, प्रगति करें। पहला कदम ही किसी भी मंजिल की असली उड़ान है और अपनी पहचान है। इसलिए पहला कदम बढ़ाने से कभी मत चूकें। हम सभी आपके साथ हैं। युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा।
1: किसान भाइयों, अगर हम देखते हैं जो ग्रामीण युवा है वो तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि जो देश है वो गांव के अंदर बसता है, तो बड़ी बात यह है कि गांव के जो युवा है उन्हें सही दिशा में उन्हें आगे ले जाना है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके और उन्हें शहरों के मुकाबले समान अवसर उन्हें मिले और वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। उदय शंकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत ग्रामीण युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी एवं नेतृत्व, और इनमें हिस्सा लिया था उदय शंकर सिंह। आप कार्यकारी अधिकारी हैं विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे परमिंदर सिंह।
3: और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये देशभक्ति रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज में देशभक्ति रागनी।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
0: राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल साहब, न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक

रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जनभागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से

जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुकान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुकान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया अबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब

देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है।

पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध वो ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के, विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा तो विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा तो इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा तो अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पाराव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदी पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुसुलोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव गांव में, नगर नगर में, भारत के घर घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माई वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड एब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। वी अनफर्ल इट विथ इमेंस प्राइड। On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our

0: हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 8 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम।

गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने फिल्मी संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज का गीत मालिका का रोलर कोस्टर राइड लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ बहुत प्यारी बातें, बहुत खास बातें और कुछ चुनिंदा गीतों के संग। और गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में आज आप एंजॉय करेंगे ये सफर आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी दीप्ति के संग।

दोस्तों, कुछ शामें सिर्फ शामें नहीं होती हैं, उनमें मौसम की खुमारी भी होती है और त्योहारों की तैयारी भी। और होती हैं कुछ यादें जिन्हें हम ताउम्र अपने साथ लेकर चलते हैं। और आज की शाम दोस्तों, आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है। एक नई उम्मीद, एक नई उड़ान और खुद की खुद से पहचान की शाम। तो आइए जिंदगी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं और करते हैं खुद से एक मुलाकात, रूबरू होते हैं अपने जुनून से, उस जुनून से जो हमें हर पल हर दम आगे बढ़ना सिखाता है।

रूबरू होकर खुद से मिलो तो कुछ ऐसा लगता है कि जिंदगी ना सिर्फ मंजिलों का नाम नहीं है, ये तो नाम है छोटी छोटी खुशियों को जीने का। और इमेजिन करिए, सावन की फुहार, हाथों में मेहंदी, झूले और देश डूबा है त्योहार के रंग में, आजादी के रंग में, तो ये खुशी कैसी होगी। आज की शाम में आजादी की खुली हवा है और साथ ही रौनक है, रौनक त्योहारों की। तो चलिए इस रौनक में थोड़ा सा रंग डालते हैं, थोड़ी सी मस्ती डालते हैं और मिलाते हैं कुछ ऐसे गीत से कि बस पाओ ना अपने आप ही तिरक उठेंगे।

और जोश, जिस जोश के साथ ये गीत सुना, ये जोश तभी मुकम्मल होगा जब उसके साथ उम्मीद भी हो, है ना? और जब उम्मीद मुस्कुराने लगे तो हर सफर एक जश्न बन जाता है। दोस्तों, कुछ जज्बे ऐसे होते हैं ना जिन्हें किसी एक दिन या किसी एक मौके का मोहताज नहीं होना पड़ता, वो तो बस दिल में होते हैं। उमंग बनकर, हौसला बनकर, अपनी पहचान पर गर्व बनकर। तो चलिए जीते हैं थोड़ा सा इसी जोश को, थोड़ा और खुलकर। कदमों में रफ्तार, दिल में जुनून, और होठों पर बस एक ही आवाज़।

दोस्तों, जिद और जोश ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। जोश वो ताकत है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है या रास्ता आसान बना देती है। कभी सपने बड़े होते हैं, कभी रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ मुकाम ऐसे होते हैं ना, जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, उन्हें हर हाल में हासिल करने का जुनून होना चाहिए। हर हाल में हासिल करने का जुनून। चलिए देते हैं अपने इसी जुनून को आवाज़।

जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ट्यून इन किया है उनको हम बता दें कि आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। कार्यक्रम चल रहा है गीत मालिका और आज इस कार्यक्रम की रोलर कोस्टर राइड को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति। और आज की ये शाम है कुछ खास, क्योंकि हम साथ मिलकर मना रहे हैं अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। तो क्यों ना इस शाम को थोड़ा सा और कलरफुल बना लें, थोड़ी सी फिक्र को किनारे रखें और आज़ादी की इस खूबसूरत हवा में खुशी और मस्ती के कुछ पल बांट लें। तो चलिए भाई, हमारे दोस्तों, हमारे श्रोताओं, हमारे लवली लिसनर्स के लिए आज की ये शाम, ये मुस्कान और ये जश्न, ओवरऑल आज की ये पार्टी मेरी तरफ से।

दोस्तों, आज की ये खूबसूरत शाम हम बिता रहे हैं कुछ यादगार पलों को साथ में, अपनी ही धुन पर, अपनी ही मस्ती में। हम बांट रहे हैं कुछ कुछ मुस्कुराहटें और कर रहे हैं कुछ कुछ बातें। और चलिए, अब वक्त है कि इन पलों को आसमान में थोड़ा सा खुला छोड़ दिया जाए, ताकि ये यादें थोड़ी और भी खूबसूरत हो जाए। क्योंकि जिंदगी का असली मजा भी तो इसी में है, जब हम कुछ देर के लिए मंजिल की दौड़, रास्तों की उलझन और कल की फिक्र को पीछे छोड़कर बस इस पल में जीना सीख लेते हैं, जहां ना तो कोई जल्दी होती है, ना कोई बोझ, और बस एक सुकून होता है। तो चलिए, आज की इस शाम को बनाते हैं और भी खास, करते हैं थोड़ा सा हल्का महसूस, थोड़ा दिल से मुस्कुराते हैं, थोड़ा सुकून को पास लाते हैं और छोड़ देते हैं खुद को इस खूबसूरत माहौल की धुन पर।

हवाओं के साथ चलते चलते चलिए बदलते हैं थोड़ा सा रास्ता, क्योंकि हर सफर में थोड़ा सा ठहरना जरूरी है, लेकिन ठहराव के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जनाब, बात किसी मंजिल की नहीं होती, बात तो बस उन पलों की होती है जिन्हें याद करके बाद में मुस्कुराया जा सके। ये जिंदगी भी ना बड़ी अजीब होती है, कभी हमें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है और कभी बस मन करता है कि रास्ता थोड़ा सा लंबा और हो जाए, कुछ देर बस यूं ही साथ चलते रहे बिना ये सोचे कि अगला पड़ाव कैसा है, कहाँ है। क्योंकि असल में याद तो वही पल रह जाते हैं जिनमें हमने कुछ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला हो। दोस्तों के साथ हंसी, बेवजह की बातें, वो छोटी छोटी खुशियां जिनका कोई हिसाब नहीं, जिनका कोई मतलब भी नहीं। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही करते हैं, मंजिल की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल जिंदगी को थोड़ा सा अपने अंदाज में जीते हैं।

और दोस्तों देखिए ना, आपसे बातें करते करते इस रोलर कोस्टर राइड को विदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन विदाई अगर ऐसी हो कि चेहरे पर मुस्कान रह जाए तो वो विदाई कहलाएगी क्या? बताइएगा मुझे। वैसे आज की इस मुलाकात में कभी जिंदगी के रंग थे, कभी सपनों की बातें, कभी मिट्टी से, अपनी मिट्टी से जुड़ा गर्व, और फिर बहुत सारी, ढेर सारी हंसी मस्ती ठहाके भी। आखिर जश्न की सबसे अच्छी बात यही तो है कि उसे अकेले नहीं, साथ मिलकर जिया जाता है। तो बस जाते जाते कोई टाटा बबाए नहीं, एक बार आखिरी बार आज के इस प्रोग्राम में दिल खोल कर मुस्कुराते हैं और इस शाम को एक बार फिर से साथ में सेलिब्रेट करते हैं।

की गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड आपने एंजॉय करी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी यूं ही संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए आकाश।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
3: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
3: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
3: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।

0: हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों

0: विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदामात कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड का ऐलान किया गया है। मानसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दो गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुम्बकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे वहाँ अब जोश और जज्बा नजर आ रहा है।
1: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
0: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तिहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है।
1: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
0: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे

0: अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क्यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सदसाला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने यौम आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां यौम आजादी मनाने जा रहा है। वजीर आजम मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। भारतीय फदाइया की 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफर में युवा शक्ति की तवनाई, उमंगों और अहम ताउन को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फौज, बहरिया, फजाई फौज और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें PM विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफीद फनकारों, PM मुद्रा योजना से मुस्तफीद होने वाली कारोबारी खवातीन, PM स्वानिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यौम आजादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क्यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात मना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स की मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बाटू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बाटू सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लेफ्टिनेंट कर्नल मानियो फ्रांस PF मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर एसटीएफ सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के साले नौ नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बैरून मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाजे किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए बाहमी और इंसानियत की अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जुनूब वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा यौम आज़ादी के इस्तकबालिये में नुमाइश की जाएगी। भारतीय रेलवे नन्हे ऑपरेशन फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले 65 गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाया है। ये बच्चे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मिले थे। फिरोजपुर डिवीजन ने मुसाफिरों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला गुमशुदा या अपने खानदान से बिछड़ा हुआ मिले तो फौरी तौर पर RPF या स्टेशन के अमले को इत्तला दें। मुसाफिर बच्चों की हिफाजत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड VDG का एक रुकन उस वक्त हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया जब आज उधमपुर जिले में एक आपसी झगड़े के बाद उनके साथ ही VDG के एक रुकन ने मुबैना तौर से उन पर फायरिंग कर दी। ये वाकया दूर दराज के पंचेरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब VDG के मेम्बरान पुलिस चौकी जा रहे थे। जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है जबकि पुलिस की एक टीम ये मालूमात हासिल करने के फौरन बाद जाय वकू के लिए रवाना हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुजाहिरीन बुनियादी हकूक, मुबैना हलाकतों के लिए एहतसाब और शहरी आजादी पर मुबैना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस मकबूजा इलाके में जारी गड़बड़ के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेज के जरिए तकरीबन 100 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। ओडिशा को मॉनसून की दिक्कतों का मुसलसल सामना है जहां मूसलाधार बारिश शिमाली अजला में बार बार सैलाब आने का बायस बन रहा है। इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एक महीने में 4 मरतबा आने वाले सैलाब के बायस कई अजला बुरी तरह मुतासिर हैं जबकि बालासोर, भद्रक, क्यूंझर और मयूरभंज शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मजीद बारिश होने की IMD की पेशगोई के साथ ही 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
3: गुज़श्ता 30 दिनों में बार बार शदीद सैलाब आने के बाद बेतरनी, जलाका, सुवर्णरेखा, बुधबलंगा और सालंदी नदियां एक बार फिर तुगयानी पर हैं। दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं जबकि बहुत से गांवों का रबता दूसरे इलाकों से मुनकते हो चुका है। मयूरभंज में बुधबलंगा दरिया के पानी की वजह से बेतनती ब्लॉक जेरे आब है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी न्यूज के लिए प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: भारत के महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

بسم الله الرحمن الرحيم.

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ

وكفى بنا حاسبين.

0: सनम नाउ।
1: तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से।
2: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर

पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आइए सुने कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर

0: भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
2: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
1: The president said the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: Speaking about the country's young population, the president said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a

0: और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर

श्रोताओं, ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं एक और गजल उन्हीं की प्यारी सी आवाज में।

श्रोताओं, जगजीत सिंह साहब गजलों की दुनिया में वो जाना माना नाम है जिनके बिना गजलें आज भी अधूरी मानी जाती हैं। हालांकि आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी गजलों और यादों के जरिए वो हमेशा हमारे जहन में मौजूद रहेंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ये मशहूर गजल।

श्रोताओं, गज़लों की दुनिया में गज़ल गायिका चित्रा सिंह का भी एक अलग ही मुकाम है। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, इसी के साथ गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की ही आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। सुबह के चार बजकर चौवन मिनट और 7 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 18। 6:55 पर आप संस्कृत समाचार सुन सकेंगे। सुबह 7 से 9 बजे का समय होगा स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकते हैं। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुनेंगे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। 9:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम धरती आकाश। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक और 10 बजे आप सुन सकते हैं

0: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उन्होंने तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो की विस्तारित सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

인도델리 광포 电台 听众朋友们, 印度独立日的89年时期的第二首歌曲是普拉迪伯唱的请收听